खड़ग केत, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हसद लेह उबारी सर्व ठौर मो दुष्ट दोख ते।

जिसनो करे रहम तिसना विसारदा, आप उपावन हार आपे ही मारदा, सब किश जान जान बुझ विचारदा, अनक रूप खिन मार।

कहूँ रूप तारे महाराज सोहंग, कहूँ देव कन्यान के मान मोहंग। भुजंग प्रयाग छंद श्री मुखवाग पातशाही दसवीं, सिरंग सेत शतरंग सो सुबंग विराजंग, लखे शेल शाया करे तेज लाजंग। विशाल लाल नैनंग तेरे बंके लोयन दंतरी साला, विशाल लाल नैनंग महाराज सोहंग, तिगंग आसवालंग हसंग कोट क्रोहंग। कहूँ रूप तारे।

चारे साचा एको वर्तै बिन गुर किने न पाया नानक रंग रवै रंग राती जिन हरसे दी चित लाया कामन मन सोझला साजन मिले प्यारे राम गुरमति मंदर मन होआ हर राख्या और धारे राम हर राख्या और धारे अपना कार सवारे गुरमति हर जाता मोहलिया मन मेरा पाया तुम पाया कर्म विदाता सतगुर सेव सदा तू पाया हर वस्या मन मरारे नानक मेर लई गुर अपने गुर के शब्द सवारे सतगुर सेव सदा तू पाया हर वस्या मन मरारे नानक मेर लई गुर अपने गुर के शब्द सवारे

सहज आनंद हुआ बड़भागी, मन हर हर मीठा लाया। जन कह नानक लाभ पहली, आरंभ काज रचाया। सहज आनंद

अनहद शब्द बजाए। हर तीजड़ी ला मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो। संत जना हर मेल हर पाया।

0: गावै को साज करे तनखे, गावै को जी लै फिर देहे, कथ ना कथि न आवै तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट,
1: बोलन
0: बोलिए जित सुन तरे प्यार,
1: अमृत वेला सचना वडियाई विचार,
0: धर्मी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार,
1: नानक एवै जानिए सब पापे सचियार,
0: जाई कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए,
1: जिन से व्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान, गाविए
0: सुनिए मन रखिए पाउ दुख पर हर सो कर ले जाए,
1: गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहा समाई,
0: ईश्वर गुर गोरख वर्मा गुर पार्वती माई,
1: जे हो जाना अखा नाही कहना कथन ना जाई, गुरायक
0: देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई,
1: तीर्थ नावा जे तिस पावा भिण पाणे
0: सिर ठू पाई वेखा बिन करमा के मिले लई,
1: मत विच रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुनी,
0: गुरु एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई,
1: जे जुग चारे आर जा होर त सुनी होए,
0: नवा खंडावे जानिए नाल चले सब कोई,
1: चंगा ना और खाई कै जस कीरत जगले,
0: एक सनदर ना आवई ता

0: सद वीर सुरना सुने धर तबले आकाश
1: सुने दीप लो पाताल सुने पोहे न सके काल
0: भगत सदा बगा सुने दुख पाप का नाश
1: सुने ईश्वर वर्मा इंद सुने मुख सलाहन मंद
0: योग जुग तन पे सुने शास्त्र सिमरत वेद
1: नानक भगत सदा विगास सुने दुख पाप का नाश
0: सत संतोख ज्ञान सुने अठ सठ का स्नान
1: सुने पढ़ पढ़ पाप हवान सुने लागे सहज
0: भगत सदा भगा सुने दुख पाप का नाश
1: सुने सरा गुणा के गाह

0: गए जूदो पार कित्या गणत नहीं विचार।
1: किते खप टूटे बेकार किते लैले मुकर पाहे किते मूरख खाही खाहे
0: कित्या दुख पूछ सद मारे

0: क्या विचारे,
1: सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई,
0: भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई,
1: रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई,
0: कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई,
1: जो तिस भावे सोई करसी हुकम न करना जाई,
0: सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई,
1: संतोख शर्म पत होली ध्यान करें विभूत,
0: किंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा परती,
1: आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत,
0: आदेश से आदेश आद नील नाद नाहक जुग जुगे को वेश,
1: भुगत के आंदा भंडारण कट कट बाज।

0: जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै
1: सब ही तेरा निरालम जानत बे

0: यस्तु तव शरणि परे तिनके दुष्ट दुख तो है मरे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट न
1: अच्छा होए ताई सब काला दुष्ट रिष्ट करे तत्काल।

मेरा पात पिता तू है, मेरा माता तू, मेरा बंधप तू, मेरा प्राता तू, मेरा राखा सबनी थाई, ता पौ केहा काड़ा जियो। राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर जामी। सतनाम, धन वाहिगुरु।

जो शरण स्वत रखन मान जो गुण सुदूर पुराने छोड़ जाए तिसका शर्म करे संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारे तो हे गर्द प्रीत वसम संगो अंधकूप में पतत विकराल नानक

सा जनकीय चर्ज कथाष्टपदी साधक संग मुख जलोत्साह संग मसली को साधक संग मिटे विमान साधक संग प्रगटे सो ज्ञान साधक संग बुझे प्रभ नीरा सा संग सबोतन मेरा साधक संग पाए नाम रत्न साधक संग एक ऊपर जतन साधकी महिमा बरने कौन प्राणी नानक साधक शोभा परमाय सुमानी साधक संग गोचर मिलाय साधक संग सदा प्रफुल है साधक संग आवे बस पंचा सा संग मत बस पंचा सा संग सब की रेन साधक संग मनोहर बहन साधक संग न कतूं धावै सा संग स्थित मन पावै साधक संग माया ते भिन्न सा संग नानक प्रभ सो प्रसन्न सा संग दुश्मन समीत साधु के संग मां अपनीत सा संग किसे नहीं बैर साधक संग न बिगा पैर साधक संग नाही होता नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग नाही होता साधक संग तरे सब आप आपे जाने साध बढ़ाए नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कब हूं ताव है साधक संग सदा सुख पावे सा संग बसत गोचर रहे साधु के संग जर सह साधक संग बसे तन उच्च साधु के संग महल पूछे साधक संग दृढ़ सब धर्मो साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम रत्न साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधकी मैं मां वेद न जाने जेता सुने तेता बखियाने साधकी उपमा ते गुंते दूर साधकी उपमा रही भरपूर साधकी शोभा का नाही अंत साधकी शोभा सदा बेअंत साधकी शोभा हुई थी ऊंची साधकी शोभा मूझते मूची साधकी शोभा साध बने आई नानक साध प्रपेद न पाई साध के संग सब कुल उधार है सा संग साध मीत कुटम निस्तार है साधु के संग सुतन पावे जस्तन ते सबको बरसाव है सा संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुरदेवा साधु के संग पाप लायन सा संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थाने गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नाही किसका हालो दर्शन पेट तो निहाल साध के संग रूप तहर है साध के संग नरक प्रहर है साध के संग इहा हुआ सुहेला सा संग बिशर धर मेला जो छह सोई बल पावे साध के संग न बिरथा जावे हार ब्रह्म साध बसै नानक उदय सा सुन रसै साधक संग सुन नाउ सा संगर के गुण गाऊ साधक संग न मन ते बिसरै सा संग सर पर निस्तर है साधक संग लगे प्रमीठा साधु के संकट घटीठा सा संग पे आज्ञाकारी सा संगत पई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संग जो दुसाग की मैं मां वेद न जाने जेता सुनै तेता बखियाने साधकी उपमा ते गुण ते दूर साधकी उपमा रही भरपूर साधकी शोभा का नाही अंत साधकी शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उच्चते उची साध की शोभा मूचते मूची।

ब्रह्म ज्ञानी सतान्द्र लेप जैसे जल में कमलावले, ब्रह्म ज्ञानी सतान्द्र धोक जैसे सुसर्प को शोक, ब्रह्म ज्ञानी के दस्यमान जैसे राय रंग कुला के तुलपवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीर जी जो वसुद्धा को खुद देखो चंदन ले, ब्रह्म ज्ञानी का एक नाव जो वसुद्धा को खुद देखो चंदन ले, ब्रह्म ज्ञानी का एक गुनाओ नानक जो पाव का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लगे जलाओ, ब्रह्म ज्ञानी के मनोय प्रकाश जैसे तारु प्रकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उचित उच्च मन अपने सब से नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नाम जन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सल किरी ना तुम रस, ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कश बुरा ना पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा, ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लेता अवत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी के वैसो भला, ब्रह्म ज्ञानी सौ फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उधार नानक, ब्रह्म ज्ञानी जब पैसा सकल संसार, ब्रह्म ज्ञानी के करंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम प्रवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी अहो बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संगीता, ब्रह्म ज्ञानी का चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोज जामे सर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी क्या सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जान है भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथन जाय आखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान है, ब्रह्म ज्ञानी की गात, ब्रह्म ज्ञानी जान है, ब्रह्म ज्ञानी के अंत ना पार नानक, ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप रंकार, ब्रह्म ज्ञानी की

होकर कर्ण कर्ण प्रभु एक है दूसर नही कोय। नानक दिस बलहारण जल थल मयल सो अष्टपदी करण करावन करण जोग जो तिस भावै सोई होग। खिन में थापु तापन हारा अंत ने किस पारावार। हुक्मे तार द्रहावै हुक्मे उपजे हुक्म समावै।

गलयास्पदि जिसका अंतरी राजमान सो नरकपातियो सोवान जो जाने मा जो गुणवंत सो तविष्टा का जंत आपस को करमंत कहावे जन्म मरे भोजन परमावे धन पुम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीब विवसावै नानक इहां मुख त्यागे सुख पावै धनवंता वे कर कर पावै तृण समांक संग न जावै बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस पल भीतरता का होए विनाश सब ते आप जने बलवंत फिन मैं होए जाए पसमंत

निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कड़कड़ सुनी सर्व मुखियाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। सलोक

निहात है, तिसका हुकुम सुख होय, तिसका नाम रखंठ पुरोय। सिमर सिमर सिमर प्रस होय, नानक बिघन लागे कोय, उस्तत मन मैं कर निंकार, करमन मेरे सदव्यहार। निर्मल सनामृत पियो, सदा सो ना कर ले जियो, नैनो बेग ठाकुर का रंग, सत्संग बिनसे सत्संग। चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपी अरबिंद, कर हर करम सरण हर कथा, हर दरगे नानक उज्जल मथा। बड़ भागी ते जन जगमाए, सदा सदार के गुण गाए, राम नाम जो करे विचार, सेतनवंत गिने संसार। मन दन मुख बोलिया मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, तूत पियो सोजी जान। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक ने निरंजन जानिया, गुरु प्रसाद अपने आप जो बूझ सूझया, जिसकी जानो तिस नाम बूझे। सत्संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते हर दिन रहत, अण दिन कीर्तन केलो ख्यान, कृष्ण मै सोई निर्वाण। एक उपर दिह जन की आसा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म के समण भूख, नानक तिस न लागै दोख। जिसको हर प्रमाण चित आवै, सो सं सोए ना नहीं डुलावै, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेव को किसते डरे। जैसा सा तैसा दिष्टा, अपने कार्य में आप समाया, सोदा सोदा सोदा सीजिया, गुरबसाता सब बुझया। जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सुखम सोई असूल, न कि जन्मे न कि मरे, अपने चलते आप ही करे। आवन जावन दिष्टान दिष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल मैं आपे, अनुचुकद्राई ताप उताप। अवनाशी नाई ते किस खांडे, धारण तार ब्रह्मांडलक भे पुरख प्रताप, आप जपाय त नानक जाप। जिन प्रभु जाता सो सो बावंत, सगल संसार उदरे तिन मंत, प्रभु के सेवक सगल उदाहरण, प्रभु के सेवक दुख विसारण। आपे मेले कृपाले, गुरु का शब्द पै निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करे बड़ पागे।

नाना भे कराय करंग नाना विधि बिनो विस्तार प्रभु नासी एक अंकार नाना चौद करे किन माए पूरे पूर्ण सबडाए नाना विधि कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर दिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान करना नाम कतारे सगले जंत नाम कतारे खंड ब्रह्मांड नाम कतारे सिमरत वेद पुरा नाम कतारे सुनन के अंत अंत नाम कतारे अस्पताल नाम कतारे सगले अकार नाम कतारे पुरिया सब भवन नाम के संग द्रे संसारण कर किरपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद मैं सो जन कद पाए रूप सत जाख सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतु संसद जा की बाणी सतपुरख समय सुमाणी सतकर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सतकरणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सतनाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सतनान गुर ते पाए सत वचन साधु उपदेस सत ते जन जा किरदे प्रवैस सत निरत बूझे जे कोय नाम जपता की गत होय आप संत किया सब संत आपे जाने अपनी मित गत जिसके सिर सो करने हार अवन बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावै सो वरतिया बिस्मण बिस्म भय बिस्माद जिन बूझै ति साया स्वाद प्रभु के रंग राज जंदा है गुर के बचन पदार्थ लहे उदाते दुख अटन हार जाके संग तरे संसार जन का सेवक सोड़ भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसे पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत बेकनहार नाम सत सत द्यावनहार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जा सुनता पूजन हार को संत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए सत सरूप दे जिन माने करण करावन तिन मूल पछाने जाकर दे विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भैते निरपो हुए बसाना जिस ते बजै तिस मन समाना

जिस कुणत बच अमीत सो सुख साधु संप्रीत जिस उबा को करे भली करण सासु अबजर की शरण अणगो भावी रोग न जाए रोग कुंडे हर उकदलाए सर्व धन में हर नाम निधान जप नानक दरगे प्रवान मन प्रबुद्ध हर के नाए दा दिस दावते आवे ठाए ताको बिघन लागे कोय जाकर दे बसे हर सोए कलता ती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भोगन से पूर्ण यास भगत पाया तुम परवास तिथ कर जाए बसे अविनाशी कौ नानक काटी जम फासी तत् विचार कह जन साचा जन्म मरे सो का चोका छा आवा गौण मिटे प्रभु सेव आप त्याग शरण गुरुदेव रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण उधार अनुगो भाव न छूटन हारे सिमर सा सदवे विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नानक बल पाए संग न चाल तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत उद मीत कुटुंब बरवंता इंते कौन तुम कौन सुनात राज रंग मै विस्तार इंते कहो कौन छुटकारा सा सिरत सवारी झूठा डाम झूठ पसारी जिन दिए तिस बुझे न बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मतु ले आने भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माए जन्म जन्म के लुख जाए आप जपो और नाम जपाओ सुनत कहत रहत कद पाओ सार पूत सार को नाओ सह सुभाय नान गुण गाओ त्रियुत्र समैल बिन जाए हम विफै हो चंद बसे सगुणाल सास ग्रह सर नाम सुमाल छाड़ सियाणम सगली मन सात संग पावन सच धना हर पूंजी संच करो विहारी सुख दरगह जयकार सरन निरंतर एको दय कहो नानक जा के मस्तक लै गए को जा पे को सा लायक सिमरि पुमण आए एक सके गुण गाव अनंत मन तन जा पे भगवंत एको एक करया पूर्ण पूर प्रभया अनुगिस्तार एक पे करात प्राचत गए मन तन अंतर गुरु राता गुर प्रसाद नानक की जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया पर आया तो शरण आए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपद जाचक जाचे प्रावधान कर कृपा देव हर नाम साधना की मांगो धूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गाव सास सास प्रभु तुम्हें दया चरण कमल सो लागे प्रीत भक्त करो प्रभु की नित नीत कोटे को धार नानक मांगे नाम प्रभु सर प्रभु की दृष्टमान सुखोए हर सुभावे बिरला कोए दिन चा कैसे जंत्र बताने पूर्ण पुरुख नहीं डोला ने सुभर परे प्रेम सरस रंग उपजे चाओ साध के संग परे शरणान सब त्याग अंतर परगा संद निवला बटभागी जपया प्रभु सोए नानक नाम ते सुखो है सेवक की मनसा पूरी भई सतगुरु ते निर्मल मत लै जन को प्रभु हो दया सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुख जन पया जन्म मरण दुख भरम गया इस पुनी सरदा सा पूरी रव रया सा संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सुख विसरजे काल न भाने सुख विसरजे किया जाने सुख विसरज सब कुछ दिया सुख विसरज जीवन जिया सुख विसरज जगन मराखे गुर प्रसाद कबीला लाखे सुख विसरज बिखते काटे जन्म जन्म का टूटा गाढ़े गुरपुरे ते बुझाया प्रभे अपना नानक दंत साजन संत करु काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख भाव आप जपो रण नाम जपाव भगत पाए तरे संसार बिन भक्ति तन हो से सार सर्व कल्याण सुख नित नाम बूढ़े जात पाए विश्राम सकल दुख आवत नास नानक नाम जपो गुंता सुभजी प्रीत पुनमरा चाव मन तनंतरे सुहाव नेत्रो बेग दर सुख आए मन विकसे सा चरण दुआए भगत जना के मंत रंग विरला को पावे संग एक बस दीजिए करमया गुरु प्रसाद नाम जपलै ताकि उपमा कही न जाए नानक रया सब सुमाए प्रभु बख्शन दीन दयाल भगत सदा कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व करा करत परपाल आदि प्रभु कारण करतार भगत जना के प्राण धार जो जुज पैसो पुनीत भगत पाए लाभ मन हीत हम निर्गुणी आर नीत आदार नानक तुमरी शरण प्रभु भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए निम करके गुण गायन ग्रहज बगुड़े आई हर के नाम की कथा मन पाए बो भोजन का पर संगी रसना जब तिहारा नीत भली सुकरणी शोभा धन मंदिर ते बसे पूर्ण गुण मन सा संग प्रभु दे निवास सर्व सुख नानक रगा सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जा पशुपति जब या कार कृष्ण दृष्टि तब आपन तब कहते होता जब धारी आपन तो सुन समाद तब बैर बदौकी संकमाद जब इसका वर्ण से न जावत तब हर सौ कोक से व्याप
जावे अपने आप पार ब्रह्म तम ओ गंग होत परम आपन के लिया वर तीजा नानक करण हरण दूजा जाव होत प्रभु केवल तनी ता बंद मुक्त को किसको गणी जावे करग अपार तब नरक सुरु को कौन उतार जब निर्गुण प्रभु सह सुहाए तब शिव शक्त को बिठाए जब आप अपनी जोत रहे तब कौन निडल कौन कत डर है आपन जल दब करण हार नानक ठाकर गार विनाशी सुख अपने आसन दजन मन को का विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभ एक तब चित्र गुप्त किस पुछ लेख जब नाथ नरंजन गोचर का दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आपी जर जा नानक आपन रूप आपी बर जा जय निर्मल पुरुख पुरुख पद होता तय बिन मैल कहो क्या धोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन उपमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत को की जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय किसे भूकम त्रवतावे करण करामन करण हार नानक करते का नय समार जय अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कौन माए बा मित्र सुतवाए जय सर्वकलापे पर बीने तब एक देव कहा को चीन जब अपने आप अवतार है तो सगन सगन काम विचार है जब अपन ऊचे अपने आप नेरा तय कौन ठाकुर कुन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रह समाद नानक अपनी का जानो आप जय छेलिया छेद भे समाय वंक से व्याप तुमाय आप गो आप देश तय गुण का ना ही प्रवै जय कह के भगवंता तय कौन अचिंत कुछ लागे चिंता जय अपने आप आप तेरा तय कौन कथे कौन सुनने हारा बो बैन तू ते उचा नानक आपस गो आपे पहुचा जा प्रचो प्रपंच कार तय गुण मैं किन्नो विस्तार पापुन तय पई कहावत को नर को सुरु गुंछावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पै भार दुख सुख मन पवान प्रकार क्यों क्या आपन खेल आप कर देख के संकोच है तब नानक कह जय उगत भक्त आप जय बसरे पासार संपरता दो पाक आपे धनी उनकी शोभा नु बने आपे कौते ग्रह जो जया पे रस भोगन निर्जोग जिस पावे तुझे अपना लाभ है जिस पावे तुझे खेल खुलावे बेशुमार ताक न तोले ज्यों बोला।

त्यों अख से शरीर ए दोए अखर ना खिसे जो गह रहे हो कबीर। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वस्त्र छीनत द्रौपदी रखी लाज, जिन जिन सेवे आ अंतवार, रे मन सेव तू पर तने सेवे आ बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल पही सद सिद्ध बेणी को कुर कियो प्रगास, रे मन तू भी हो है दास, जय देव त्याग्यो अहमेव नाई उधरयो सैन से, मन डीग न डोले कहूं जाए, मन तू ही तरसे शरण पाए, मन तू भी तरसे

कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर में दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस घर की तो इस घर की घर मानस जन्म अमोल है तो इस घर की कीमत परी

बिबद बिख्याता है नहीं ससुरार सास ससुरार सारो और सारी नहीं बिर

कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर में दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस घर की घर मानस जन्म अमोल है तो इस घर की।

प्रगट पुरख परवान सब ठाई जानी है। दिन रैन अराध समाले साह साह नानक की लोचा पू सच्चे पातशाह समाले सा सा समाले

कानड़ा कानड़ा महला पंजवा अहं तोरो मुख जोरो गुर गुर करत मन लोरो प्रिय प्रीत प्यारो मोरो रहाओ।

माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीर्त वंत सदा सुख संपत रिद अर सिद्ध ना छोड़े साथ दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो एव तथ तारे कहा

संतन के पाछे मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद पाया प्रभ आवत सुनिया। धन गुरु अर्जुन देव।